0: होली कोम्बुचा ड्रिंक कुलुम्बु कार को होली कोम्बुचा ड्रिंक अनु मिलीगा जबीबीरी अकुली बाबा प्रीमियर डिस्ट्रीनर्स लिमिटेड अब संगी में कंगोमा बंबर रोड आई नीड द कैंडी अतिफामा सज्जा हनीमून चामा चाफे वो फुनिय कोलंबो का मोबाइल वे नुके लिकुलियो कुंपी ओकुमा ये बिसिंगा वो जेरो मुसा मुनाना बिरी जेरो बिरी एमु एमु मुनाना मुसांबो कोलंबो का कोलंबो का कोलंबो का अल्कोहली कोम्बुचा ड्रिंक ते कुकिलिज़ वाबाली वासुए मिया के कुमिनो मुनाना
1: Oh, this is a chitungo joke, so do it. The mix.